पावन हारे गावन तुदनो पवन पाणी बैसंत्र गावै राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लेख जानन लेख लेख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे।

कर जिन सी माया जिन उपाई, कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई। ज्यो तिस भावै सोई कर सी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पात साहौ साहा पत साहेब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा आ

कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना उह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग।

हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावा।

जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ ध्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी।

आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पेन पेन तो है तेती तुम्हारा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत पूज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवा बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप सुयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारो असिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे।

पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे उथे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे पौ जल बिखम असगा।

कीर्तनी सेवा प्रवान करनी जी बुला चुका देखा वाहेगुरु गुरु मंत्र है जप हमें कोई दे जाप शरण करिए जी बुलाओ फतेह जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी धन गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आप बहुत ही भागां वाले हो जो कि संगति रूप विच जुड़ रहे सी। तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी आनंद साहिब विच कृपा करदे हन। महाराज कहिंदे हन कि करमी सहज ना उपजे, बिन सहजे सहसा नह जाए। महाराज कहिंदे हन कि तू दुनियावी कर्म जे करेगा, दुनियावी कर्म करन दे नाल तेरे मन विच सहज जा शांत जा आनंद नहीं आ सकता। महाराज कहिंदे जे थोड़ा भी आनंद आवेगा पर ओ होवेगा थोड़े चिर लई, जिहड़ा कि है टैंपरेरी। हाँ, महाराज कहिंदे हन कि आपां किरत करनी है, कर्म करने हन दुनियावी, पर जे आपां ये समझ लईए कि दुनियावी कर्म किरत करन दे नाल साडा सुख दा साधन हन, ते महाराज कहिंदे हन फिर आपां भरम विच हाँ। फिर महाराज अगे की कहिंदे हन कि नह जाए सहसा किते संजम, रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। महाराज कहिंदे हन कि तू जिन्ने मर्जी दुनियावी कर्म कर, पर तेरे मन विच जिहड़ी सहसा तेरी चिंता है, जिहड़े फिकर हन, ओह बदने हन, दूर नहीं होने। महाराज कहिंदे हन कि सहसे जियो मलीन है, जिहड़ा सहसा जिहड़ी चिंता है, फिकर है, काम क्रोध लोह मोह अहंकार निंदिया चुगली, यह साडे मन की मैल हैं। महाराज कहिंदे हन साडे मन नू मैला करदे हन। सहसे जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। महाराज कहिंदे हन कि तू इस नू किस तरह धो सकदा है। महाराज जपजी साहब जी भी कृपा करदे हन, कहिंदे हन कि भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नावे के रंग। इत्थे महाराज कहिंदे हन कि मन धोवो शब्द लागो, हर सिओ रहो चित लाए। जिहड़ा गुरमंत्र है, गुर शब्द है, तू इस दे द्वारा अपने मन नू धो। किस तरह? बार बार सिमरन करके। जो जो तू बार बार नाम जपेगा, तेरे मन की मैल लथेगी। महाराज जी सुखमनी साहब विच भी स्पष्ट करते हैं, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिध माहे समाए। जदों तेरा मन हौली हौली, महाराज कहिंदे हन कि चिंता फिकर काम क्रोध यह सारे दूतां तो यह फोनिया तो जदों ऐन निर्मल हो जाएगा, फिर की होगा? फिर जिहड़ा नाम आ तेरे मन विच वस जाएगा, तो उदों ही सानूं जिहड़ा नाम वसन दे नाल साडा जिहड़ा आनंद है, जिहड़ा कि दुनियावी आनंद नहीं पर जिहड़ा सहज आनंद है, जिहड़ा कि परम आनंद है, वह साडे मन विच उदों ही आवेगा जदों आपां मन नूं धो के आपां नाम नूं मन विच वसावांगे। इसलिए महाराज कहिंदे हन कि तू नाम जप संगत विच आ के, क्योंकि अपना दुनियावी मकसद भी यही है कि आपां रोज रहरा साहिब विच पढ़दे हाँ, भई प्राप्त मनुख देहरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। आपां रोज पढ़ते हाँ पर आपां कोशिश करनी आपां इस ते अमल भी करिए, आपां संगत विच आ के कट्ठे बह के नाम जपिए, घरे परिवार दे विच बह के नाम जपिए, फिर महाराज जी कृपा करनगे, इस तरह ही अपने मन विच शांति ते सुख आवेगा। ते महाराज सानूं विधि दसदे हन कि आपां किस तरह नाम जपना है। आल जंजाल बिकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। महाराज कहिंदे हन कि जे तू नाम जपना है, अपने कन्ना दे नाल सुनना है, राम नाम सुन रसना कहते। रसना तो जपना है, अपने कन्ना दे नाल अपनी आवाज नू सुनना है। इस तरह अपना मन फुनिया तो रहत होवेगा,
ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

तुमते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुर ते अमरदास। रामदासे होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरा श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस जिठे शब्द जाए तेग बहादुर सिमरिया। घर नौन द्यावे ताए सब थाई होए सा दसवें पातशाह। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहिया की जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान रखे। बोलो जी पंजा प्यारिया चौह साहबजाद्या चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई ते गवाई देख के अंडिट किया तिना प्यारिया सत्यारिया की कमाई का ध्यान रखे। खालसा जी साहब बोलो जी जिन्हां सिंघा सिंघणिया ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखड़िया से चढ़े आ रहे नचराए गुरुद्वार की सेवा ने कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी केसा स्वसन सिंह नभाई तिना की कमाई का ध्यान रखे। खालसा जी साहब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारा का ध्यान रखे। बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चिताव चितावन का सदका सर्ब सुखो जा जा। खालसा जी साहब तहत हर शरिया जिगते फतेह बिरद की पाए पंथ की जी श्री साहब जी साए। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सरदान नामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशना चौंकियां झंडे मुंगे जुगो हो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत का रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जी श्री ननकाणा साहेब। हे होर गुरुद्वारियां गुरुधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शे नमाणे के मान नताणे के तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जी के चरणा च अरदास बेनती महाराज जी आप जी की महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि के दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना में आरती शब्द कीर्तन नाम सिमरन अभ्यास उपरंत अमृत बाणी के शब्द कीर्तन है महाराज जीओ। समुचे सेवा निभाद्या बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या नाम जी जाप करद्या होइयां बेअंत फुलां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उदम बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईयां संगतां दे हिरदयां ते वसाउणा आईयां संगतां दी हारी दर प्रवान करनी सभनां दीआं तिल फुर पटावां दर प्रवान करनियां सभनां नूं दरों करुणा दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगों का नाश करना जी सुखों का प्रकाश करना देशों विदेशों में रखिया बख्शिश करनी महाराज जी बेन संगता दूर दुराडे बैठे घर लाइव गुरबाणी के जाप सरवण कर रही हम जाप सरवण करद्या आप जी का धन्यवाद करद्या बेंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादार सिंघा वास्ते आनंद भेटा की महाराज जी सारी संगति हारी दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी कृत कमाइया बरकत पाया श्रद्धा भावना में संपूर्ण करनी चढ़ती कला बख्शिश करनी आप जी दर घर के सेवक भाई जसप्रीत सिंह सैणी समूह परिवार की सेहत तंदुरुस्ती चढ़ती कला की अरदास बेनती करद्या गुरु घर वास्ते एक हजार डालर माया भेटा कर दिन कृपा करनी सेवक परिवार की भेटा दर प्रवान करने समूह सैणी परिवार के सिर से मेहर प्रयत रखना चढ़ती कला बख्शिश करनी परिवार को देह रूपता तंदुरुस्तियां प्रदान करनिया जीओ दर घर के सेवक स्वर्ग वासी सुनीति छाबड़ा की बरसी से उन्होंने आत्मक शांति वास्ते परिवार वालों 501 डालर माया भेटा कर दिन कृपा करनी सेवक परिवार की भेटा दर प्रवान करनी विछड़ी आत्मा आत्मक शांति बख्शिश करनी घर परिवार चढ़ती कला बख्शिश करनी अंग संघ होकर सहायता करनी कृपा करो महाराज जी सिख पंथ में एकता प्रेम भावना की दात बख्शिश करनी जी खालसा पंथ नूं चढ़ती कला बख्शिश करनी जी इस वेले दीवाना की संपूर्णता हुई पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श के सारिया संगतां नूं निहाल करो जी से गुरमुख प्यारे मिलना जिन्ना मिलिया आप जी का नाम चेतावे नानक नाम चढ़ती कला
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ।

गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटावो सिमरो जास विसंभर एक है नाम जपत अगणत अनेक है वेद प्राण सिमरत सदाखर कीने राम नाम एक आखर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै

ਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਦੇ ਫਿਰਿਆ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹਉ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਬਾਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀ ਸਰ ਥੀਵੈ ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸਵ ਹੈ ਵਰ ਭੂਮਦਾਨ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤਉ ਭੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨ ਜਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮੰਤੇ ਹੁਟੈ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨ ਤੰਤੇ ਜਾਤ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨ ਧਰਾਪੈ ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ ਕੋਟ ਪਾਪ ਦੁਰਗਹਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਝੈ ਛੂਟਸ ਨਾਹੀ ਊਬ ਪਿਆਲ ਮੋਹੈ ਵਿਆਪਹਿ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿੰਤਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦਗਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਣੇ ਪਰੈ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵ ਹੁਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨੋ ਆਪੇ ਆਪਨ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਵਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਸ ਕੋਏ ਸਗਲ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਿਲ ਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਹੈ ਉਦਮ ਭਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜਹਿ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੂਧ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੁਝੈ ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰੂ ਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਮੁੱਲਾ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਧ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸ ਪਾਮ ਕਰਨ ਨਿਤ੍ਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੈ ਗਵਾਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਤਾਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿਮਾਨ ਸਹਿ ਵਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੂਲਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ ਗਰ ਧਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਰ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰੈ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ
बाहर पे एक अंतरमल माया छपस नहाय कच करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पाथर कैसे तरह अथा जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लिहो ओढ़ निभावे कहां बुझारत बुझे डोरा निस्कैये तो समझे पोरा कहां बिसन पद गावे गोंग जतन करे तो पीसुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उहां उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरह संग सहाय सो आवे न चीत जो बै राई तासो प्रीत बलुआ क्या ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर माने मन है प्रतीत काल नया वे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ के लाग है आन सुवाए नानक कहू न सिजई बिन ना वै पत जाए इष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावे एक बस कारण बिखोट गवावे एक पी ना दे दस पी हिरले तो मूड़ा को कहां करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत शाह अपनी दे रास खात पीत बरत अन दुलास अपनी अमान कछ बहर साहले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्त तिस आगे राखे प्रभ की आज्ञा मन माथे उससे चौगण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पात माया के हित सर पर होवत जान अनित बिरख की छाया सो रंग लावे ओ बिनसे ओ मन पछतावे जो दिसे सोचा लनहार लपटे रिहो तह अंध अंधार बटाऊ सिउजो लावे नेह ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सवाया मिथ्या हौ मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हसी अश्व बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोहमो अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुनह मिथ्या हस पर दर्प हिरे मिथ्या नेत्र पेखत परत्र रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बुझे मिथ्या सब पए सफल देह नानक हर हर नाम ले वृथि साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा वृथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरण दिन रैन वृथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों कृपन के निरार्थ दाम धन धन तेजन जह घट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु पर बीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेश है आप न करे आपत जावत जन्मै मरे जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया पहमाने आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्याण पसगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़लाए थान थनंतर रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ महो बिन सजाय अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी
जय प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध अंतन लावे तिसको सिमरत परमगत पाव है जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पह सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहरता का जस गावी जय जय प्रसाद तुझ सब को मान मुखता को जस रसन बखान जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पाव है नानक पत सेती कर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताके जय प्रसाद तुझ गो न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आ भूखण पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अश्वहस अस्वारी मन तिस प्रभ कौ कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिल्क तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई तिसे त्याई जो एक अलख है इहा उहा ता नानक तेरी रख है जय प्रसाद करैपन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जय प्रसाद सुनह करण नाद जय प्रसाद पेखै बिस्माद जय प्रसाद बोलह अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जे बसना जय प्रसाद हस कर चलह जय प्रसाद संपूर्ण फलह जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल अमनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू तांस्यो राच जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आप हो कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इन कै कछु न हाथ सलोक अगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटै अभिमान साध के संग प्रगटै सुज्ञान साध के संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सबकी रीन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतहू तावै साध संग अस्थित मन पावै साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत साध संग के स्यों नहीं बैर साध के संग ना बीगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही होताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग ना कबहू तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह साध के संग बसै थान ऊचै साधु के संग महल पहुंचै साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान
नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे। साधु के संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शुभ असुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कशकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मंति बिसरै, साध संग सर पर निसरै। साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग कट कट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जान है, जीता सुने ते तब ख्यान है। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभु भेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख्या एकस बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्प शोक। ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लाग्या तुल्पवान। ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक, ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी कह एह गुनाओ, नानक जो पाव का सहज सुपाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लाग्या जला। ब्रह्म ज्ञानी कह मन हुए प्रगास, जैसे तार ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी क्या नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी क्या नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी क्या होए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी क्या एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी क्या बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी क्या नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी क्या मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी क्या कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी क्या होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पाकी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय द्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी,
नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक उतारे जो अंतर नाम सर्व में पीखे भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स पात्र रूप न पेख नेत्र साध की ठहल संत संग हेत करण न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद भिख्या पर हरे मन की बास न मनती टरे इंद्री जित पंच दोखते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस बैस नो सोजस सुपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए पिन कर्म करत होए नेह कर्म तिस बैसनु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा ने बांछे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानक ओह बैसनु परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मलख हुवे तिस भगवती की मत उत्तम हुवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म है शुद्ध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नया वे वेद पुराण सिमरत बुझे मूल सुकम है जाने असूल चहो वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्प को ज्ञान चहो वर्णा में जपै कहू नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर और तारे पस प्रीत मुग्ध पाथर को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितने पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिख्या तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूझी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सोग कहावे तैसा हर्ख तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिक खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वर्ताए साई जुगत नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ आपे करण करावण जोग प्रभ पावे सोई फन होग पसरो आप हो अनंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तत करह अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहुविद अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्म उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब काव विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कांत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्व को हिरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लाभ हो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाये कई कोट पाथर बृख नपजाए कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट सस्य सून क्षेत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरी मेर सुरन थीवे
कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरे सब होते दूर, नानक आप अलिप्त रहा भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मरह, कई कोट बहु जोनी फिरह, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ के हाथे। कई कोट पए बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन कौ मिलो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरो पासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट कीने वो पात, प्रप्त हुए ब्रह्मा है समात। ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तत् के बीते, सदा निहार एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सत सद ही जीवे। कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सहज समावे, अपने जन को सास सास समारे, नान कोय परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बल हारण है, जल थल मही अल सोए। अष्टपदी करण करावण करण जोग, जो तिस पावे सोई होग, खिन में थापु थापन हारा, अंत नहीं किस पारा वारा। हुक्मे तार अतर रहावे, हुक्मे उपजै हुक्म समावे, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रहा समाई। प्रभु पावे मानक गत पावे, प्रभु पावे ता पाथर त्रावे, प्रभु पावे बिन सास से राखे, प्रभु पावे ता हर गुण पाखे, प्रभु पावे ता पतत उधार है, आप करे अपने विचार है। दुहां सिरिया का आप स्वामी, खेल बिगसै अंतरजामी, जो पावे सुकार करावे, नानक दृष्टि अवर नयावे। कहूं मानक ते क्या हुए आवे, जो तिस पावे सोई करावे, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस पावे सोई करे। अन जानत भिख्या मह रचै, जे जानत आपन आप बचै, भरमे भूला दह दिस्तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै। कर कृपा जस अपनी भगत दे, नानक तेजन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दे दिस प्रगटावै। जाको अपनी करै बख्शीश, ताका लिखा न गनै जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण करावण सरब को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावै सोई फुन थियो, कबहू ऊंच नीच मह बसै, कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊ वकास प्याल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। कभू नित करै भोपात, कभू सोए रह दिन रात, कभू महाक्रोध विकराल, कभू सर्प की हो तरवाल, कभू हुए बह बड़ राजा, कभू भिखारी नीच का साजा, कभू अपकीर्त मह आवै, कभू भला भला कहावै, जो प्रभ राखै तिवही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह। कभू हुए पंडित करे बख्यान, कभू मोन तारी लावै ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस पतंग हुए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, जो प्रभ पावै तिवै नचावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोई, कभू साध संगत ए पावै, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म के संग, जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो तस्माना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुर्बान। श्लोक
सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज विमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जान मैं जो बनवंत सो होत विष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहुजोन प्रमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आग्या सुख पावै तनवंता होय कर गरबावै तृण समान कछ संग न जावै बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल भीतर ताका होय बिनास सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटा बिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करै हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिरे अवतार अनक जतन करा तुम नहीं द्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो पला कहावै तिसे भलाई निक न आवै सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जान मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब यह जानै मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग ने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटे लख कोट तावै तृप न आवै माया पाछै पावै अनक भोग बिख्या के करै नह तृपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसे प्राप्त होए करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावण करण हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभ सोए जो किच कीन सो अपने रंग सब ते दूर सबहू के संग बुझे देखे करे विवेक आप है एक आप है अनेक मरे न बिनसै आवे न जाए नानक सद ही रिहा समाए आप उपदेशा समझे आपे रचिया सब के साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उस दे पिन कहो कि छोए थान थनंतर एक सोए अपने चलताप करने हार कौतक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उतरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत के दुखन नार जा कटै संत के दुखन जमते नहीं छुटै संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक मह पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभाते हीन संत के हते को रखे न कोई संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग ज्यों लवै संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगद जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जलै संत के दुखन सबको छलै संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओई भीगत पाहे संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज देहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदको सर्व रोग संत के निंदको सदा बिजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत पावै का उसका पी होए मोख
संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुखते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अत बीच ते टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान प्रमाइये, संत का दुखी उजड़ पाइये, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाही, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार, संत का दुखी यों बिल लाए, जो जल बिहोन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाव ईंधन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुट्टे अकेला, ज्यो बुआर तिल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सन्मिथ्या कहत, किरत नंद का तुर ही पया, नानक जो तस पावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइये, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइये, संत के दुखी की पूजन आसा, संत का दुखी उठ चला निराशा, संत के दुख ना तृष्टा कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कीर्तना मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास, सब कछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करना हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से सलोक, तजो सियाणप सुरजन हो, सिमरो हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए, अष्टपदी मान को की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रह गाए, बहुर न तृष्णा लग गया, मारे राख है एक आप, मान को कह किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागे कोई, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सद व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहिला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म शरण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से धनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, इत उत के सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्ह निरंजन जान्या, गुर प्रसाद आपण आप सुझे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सिज्या, गुर प्रसाद तत् सब बुझ्या, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल, नह किछ जन्मे नह किछ मरे, आपन चलत आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रच थाप उथाप, अवनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रियो ब्रह्मांड, अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए तनानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उद्धरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेल ले कृपाल, गुर का शब्द जप पै निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करै बड़ भागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो किछ करे सो प्रभ के रंग,
ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਣੇ ਆਏ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੇ ਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਕਾਨਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘੱਟ ਸੋ ਹੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕਉ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾ ਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਣ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹੋ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਬਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਲ ਚੜ ਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਲਪਟ ਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੂਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿਤੂਲ ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹਿ ਦਰਿਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਜੀਵਾਲਣ ਹਾਰ ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਉਹ ਕਰਣੈ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾ ਕਿਆ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਵਜੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਨੀਏ ਤਹਿਲੋਏ ਜਾ ਕਿਆ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ ਸੱਚ ਕਰਣੀ ਸੱਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਤਿਸ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਮਾਨਕ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਤਿਸ ਤੈ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਨਰਾਉ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਣਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਣ ਭਰਣ ਜਾਕਾ ਨਿਤ੍ਰ ਫੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਏ ਘਰ ਤਾਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਿਸ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੇ ਮਿਤ ਨਾਹੀ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਵਗਾਹੇ
पिता का जन्म के जन भूत सगल परोई अपने सूत सोमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्यावै से तह गुण में जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै एक रंग नाना बिद किनो विस्तार प्रभव नासी एक अंकार नाना चलत करेखिन माहे पूर रहियो पूरन सब ठाए नाना बिद कर भरत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हरनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे प्रिय सब पवन नाम के संग उदरे सुन सरवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी वाणी सत पुरख सब माहिस्माणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाकै हृदय प्रवेश सत नृत बुझै जे कोए नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मितगत जिसकी सृष्ट सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तिस पावै सो वतिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बुझ्या तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राच जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाके संग तरह संसार जन का सेवक सोवट भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखणहार नाम सत सत त्यावणहार आप सत सत सब तारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझणहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावण तिन मूल पछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरभउ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस माहेले बस गढ़ाई ताको भिन्न न कहना जाई बुझै बुझण हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालनहारा सेवक की राख है निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रखे ताकि गत मित कोए न लखे प्रभ के सेवक कौ को न पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंच ते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी महकल राखे पसम करै लश्कर कोट लाखे जिसका सासना काढ़त आप त
ताकू राखत देकर हाथ, मानस जतन करतबो पात, तिसके करतब बिरथे जात, मारे न राखे और न कोई, सर्व जिया का राखा सोई, काहे सोच करह रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत एह मन तन तृपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नाही दृष्टाया। नाम धन नाम रूप रंग, नाम सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृपताने, मन तन नाम है नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जस जेबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करह भगत आत्म कै चाई, प्रभ अपने सो रह है समाई, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे एक न जानो, आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लेहे, मन तन अपना तिन जन देह, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे है। अवर स्याणप सगली छाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक। सत पुरख जिन जानिया, सत गुर तिसका नाऊ, तिसके संग सिख उद्धरे, नानक हर गुण गाउ अष्टपदी। सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उच्चरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिख का हलत पलत सुवारे, नानक सतगुर सिख कौ जी ना समारे, गुर के ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मतले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाउ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ परम, सहस स्याणप लया न जाइये, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुन कर बचन करन आदाने, मन संतोख आत्म पतिया ने, पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट देखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जेहबा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूरन विवेक, काहू बोल ना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किन न पाई, अनक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे, सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का

0: सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस सरण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पहे प्रगास साध के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार हर हर नाम कमावना नानक इह तन सार अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार एक स्मर नाम आधार अवर पाव सब मीत विसारो चरण कमल हृद में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवथ एहो तन संचो हो वह भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख कौ नित बाछ है मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की शरणी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर के नाए दह दिस तावत आवे ठाए ताको बिघ्न ना लागे कोई जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन सह पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अबनासी कहो नानक काटी जम फासी तत् विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवा गमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमरन प्राण आधार अनक उपावना छूटन हारे सिमृत सास वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंछत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अरबनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी
1: जिंदिए तितकु जना बिकाना नाम विसार नानक प्रस्ताना गुर की मतू ले याने भक्त बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किलिप गजाहे आप जपो औरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाम सहज सुभाय नानक गुण गाव गुण गावत तेरी उतर समैल बिनिस जाए हो मैं बिक फैल होए अचिंत बसै सुख नाल सात ग्रात हर नाम समाल छाड़ छ्याण सगली मना साधु संपावे छत मना हर पुंजी संज करो व्यवहार इतर के जयकार सर्व निरंतर एको देख को नानक जाका मस्तक लेख एको जप एको चाला हे एक सिमर एको मनिया हे एकत के गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर हो पूरन पूरे हो प्रव्याप अनिक विस्तार एक ते भय एक रात पराजित गए मंथन यंत्र एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया प्रिया तू चरणाई नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अश्परी जाचक जन जाचा प्रदान करके।

संत जना का पेखन स ब्रह्म संत जना का हृदय सब ब्रह्म संत जना सुने चुभचन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता चिये रहत सत वचन तारू सब कहत जो जो होए सोई सुकुमान करण करावन हार प्रभजान अंतर बसे बाहर में ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिथ प्रभ ते सगली ओतपत तिथ भावे ता करे विस्थार तिथ भावे ता एक अंकार अनक कला लकी न जाए जिस भावे तिथ ले मिलाए कावन निकट कौन कहिया दूर आपे आप भरपूर अंतरगत जिसे आप जनाए नानक जन आप बुझाए सारब भूत आप वरतारा सारब नैन आप पेकन हारा सागर समग्री जा का तना आपन जस आपी सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सबका मधु अलिपोरा है जो किच कहना तू आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इष्ट हो तो नाही बुरा पूरा कहो किने कज करा आप भला करतु तत्नी की आपे जान अपने जी की आप साच तारी सब साच औत को तापन संग्राच ताकि गतमित कही ना जाए दूसर होए ता तो जी पाए किसका किया तब परवान।

मुकत करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आप मुकत करे संसार नानक।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अश्वरी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरा चिंद आसनित त्याग गोतरंग संत जना की तूर मर्मंग आप छोड़ विनती करो साधु संग अग्न सागर तरो हर तन के पल्ले पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार के कुशल सहज आनंद साधु संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साध के वचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत हो तू तार आप त्रै लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय सबल अनाहद वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल महंत के माते नानक उतरे तिनके साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भई सबरेनु अमृत नाम साधु संगलायन सो प्रतन भई गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुनरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभु के उस तद करो संत नीत सावधान एकागर चीत सुख मन सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूरन होए प्रदान पुरख प्रगट तबलोए सबते ऊंच पाए अस्थान बहुर ना होवै आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नाउ निद बुद्ध ज्ञान सर्प तै सिद्ध विद्या तप योग परम ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबका मधु सगल ते उदास सुंदर चतुर

नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकी गत होए गुण गोविंद नाम तुम बाणी सिमृत शास्त्र भेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत का मन विश्राम कोट अपराध साधु सुमित संत कृपा ते जमते छुट जाका मातक कर्म प्रभु पाए साधु शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुन लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभु चीत जन्म मरण ताका दुख निवारे दुर्लभ दे तत्काल उदार।

सुखमनि सुख अमृत प्रभु नाम भक्त जना के मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा।

एक हुक्म सदा पवाई है, हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नान हुक्म जीव जाए ता हो मैं कह ना कोई।

देव जायु सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जायु तीर्थ नामा जित पावा बिन बाणे के नाही करी जेचि सिटू पाई वेखा बिन कर्मा के मिला रही मत वितरत जवाहर बाण जे एक गुर के सिख सुनी गुरा एक देव जाए सपना जिया का एक दाता सो मैं वितरना जाय जे जु विचारे आर जा और दसुने होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई ना वात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे देहा कोई ना सूझई जे तुन कोई करे सुनिया छिद पीर सुनना सुनिया तरत तवलिया काठ सुनिया दीप लो पाताल सुनै पोन सके काल नानक भगता सदा विदास सुनिया दुख पापका राश सुनिया इतर परमाइंद सुनिया मुखसाला हनुमंद सुनिया जोग जुगतन भेद सुनिया सास सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पापका राश सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सटका स्नान सुनिया पड़ पड़ पाव है मान सुनिया लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का राश सुनिया सरा गुणा के का सुनिया सेख पीर पाचा सुनिया अंधे पावे राहु सुनिया हाथ हो सुगाहु नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का राश मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह बिते बिताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का वह करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई मन्ना सुरत होवै मन बुद्ध मन्ना सगल भवन के शुद्ध मन्ना मोह झोटा ना खाए मन्ना जमकै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई मन्ने मार्ग साख ना पाए मन्ने पश्यो प्रगट जाए मन्ने मगना चले पंथ मन्ना धर्म से ती सरबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई मन्ने पाव है मुख द्वार।

मन को पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पाव है तरके मान पंचे सोहां तर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान एको कह क्रह विचार करते के करण नाई सुमार ताल तन दया का पूत सुनतो था प्रख्या जुन सूत ये को बुझ हो वह सत्यार तौले उपर की ताबार धरती होर पर होर तिस्ते बार तले कमजोर जी जा तिरंगा के नाम सपना लिखा उड़ी कलाम ए लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखा केता होई केता तां सुहाल रूप केते दात जाने कौन कूत कीता पथाओ एक कवाओ तिस्ते होए लखतरियावो कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साहिब निकार तू सदा सलामत निरंकार आशंक जाप आशंक पाव आशंक पूजा आशंक तपताव आशंक ग्रंथ मुख वेद पाठ आशंक जोग मंद्र है उदास आशंक भगत गुण ज्ञान विचार आशंक सती असंग दातार आशंक सूर मोह पुक्तार आशंक मोह लिवलाय तार कुदर

घोर अशंख मूरख अंध घोर अशंख चोर हराम घोर अशंख मरक जाहे जोर अशंख गलवड़ हतिया कमाए अशंख पापी पाप कर जाहे अशंख कूड़ यार उड़ी फिराए अशंख मलेच मल पक खाए अशंख निंदक चिर कर पार नानक नीच कह विचार वारियां न जावा एक बार जो तुद पावे साईं बलिकार तू सदा सलामत निरंकार अशंख नाव अशंख ताव अगम अगम अशंख लो अशंख कै चिर पार होए अखरी मगरी साला अखरी ज्ञान गीत गुनगा अखरे लिखन बोलन बाण अखरा चित संजोग बखान जिन ए लिखे ति सुनाहि जिउ परमाहि ति तु पाहि दियता कीता ते ताना मिण नावे नाही को थाउ कुदरत कवन कहा विचार वारिय न जावा एक वार जो तुद पावे सामिलकार तू सदा सलाम चंद्रंकार पर यह हथ पर तंदे पानी दोता उतर के मूत प्रीति कपड़ होए दे साबुन लिये ओ धोए प्रिय मत पापा कै संग ओ धोपै नावे कै रंग उन्नी पापी आकण नाहे कर कर कर नालिख लै जाहु आपे पी जापे ही खाहु नान हुक्म आहु जाहु तीरथ तपत आदि दान जे को पावे दिल का मान सुनिया मन यामन की ताब आओ अंतरगत तीरथ मल्लाओ सबुण तेरे मैं नाही कोई विण गुण कीते भगत ना होए स्वागतात बाणी ब्रह्माओ सत स्वान सदा मचाओ कौन सो वेला भक्त कौन कौन चित कौन वार कौन से रुचि माहो कौन जित हुआ आकार वेल ना पाइया पणती जे हुआ लेख पुराण वक्त पायो कादिया जे लिखन ले कुराण हितवार ना जोगी जान रुत महाना कोई ना करता सिटी को साजे आपे जान सोई केव करिया का किसा लाहे केव नी को जाना नानक आखन सब को आख एक तू एक सियाणा बुढ़ा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हुए नानक देखो आपो जान अग गया ना सोए पाताल पाताल लख आकाशा आकाश कोड़ कोड़ भालत के वेद कह निकवात सहस ठार कणक दे असुरु एक दात लेखा होता लिखी है लेखा हुए विनाश नानक बड़ा आखी है आपे जान आप साला ही साला है एति सुरत न पाईया नदिया अते वाप वै समुद्र ना जाणिया समुद्र साधु तान ग्राह छेती माल धन कीड़े तुलना हो मनी ये चित मनो ना विसरै अंत न सिद्धि कहण ना अंत अंत न करना देण ना अंत अंत न देखण सुनन ना अंत अंत न जापै क्या मनवंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिर लाहि ताके अंत न पाए जाहि एहो अंत न जाने कोई बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ एवन ऊंचा हुए कोई तिस ऊंचे को जाने सोए जेवर आप जाने आप आप नानक नदरे करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंग है जोर अपार केतियां गणत नहीं विचार केते कप टूटा है बेकार केते लैला मुकर पाहे केते मूरख खाही खाहे केतिया दुख भूग सतमार ए बेदात तेरी दातार बंद कला जी पाण होए हो राख ना सकै कोई जे को खाए काखण पाए ओ जाड़ा दित्या मुँह खाए आपे जान आपे दे आख सबे के जिसनो बख्शे सिफत साला नानक पातशाही पातशाहो अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवहे अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुल समाहे अमुल द्रम अमुल दीवाण अमुल तुल अमुल प्रवाण अमुल बख्शे अमुल निशान अमुल कारम अमुल प्रमाण अमुल लो अमुल आख्या रा जाए आख आख रह लुलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़ै करह बखियाण आख है ब्रह्मा आख है इंद आख है गोपी तै गोबिंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है केते कीते।

योगे नमस्तं ईश्वरं नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं नमो सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाचे अनूपे अरूपे समर्थ निवासे सदा चिदा बुद्धता बिरद करता अधो उर्ध अर्धं अगं उग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा चिदाता दयारं अछेदि अपेदि आनामं याकामं समस्त पराजय समस्त चिदामं चिरा तेरा जोरचा त्रिचंद जल्ले हैं कले हैं अभीत हैं अभेद हैं प्रभु हैं आजू हैं आदेश हैं अभेक हैं भुजन प्रिया चंद अगाधे अबाधे आनंदे सरूपे नामो सर्वमाने समस्त निदाने नमस्तु निर्माते नमस्तु परमाते।

Namo Soku Soke, Namo Tarbu Roke, Namo Tarbu Poke, Namo Tarbu Jitang, Namo Tarbu Bitang, Namo Tarbu Gyanang, Namo Pramutarang, Namo Tarbu Mantrang, Namo Tarbu Jantrang, Namo Tarbu Dritang, Namo Tarbu Kirtang, Namo Tarbu Rangye Tarpangye Anangye, Namo Jevi Jevang, Namo Beji Bije, Akije, Apije, Samartang Partije, Kirparam Sarupe Kukarmang Pranase, सदा सर्वदारिद्र सिद्ध निवासी चारपट छंद तौ प्रसार अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलक कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग बाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता सर्वंग देवं सर्वंग देवं सर्वंग काले सर्वंग पाले उर्वाल छंद तो प्रकार आद रूप अनाद मूर्त अजोन प्रज्ञा पार सर्व मान तिरमान देव अपेव आदुदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कौपन काल यत्र तत्र विराजे अवधूत रूप रचाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नारे आद प्रकुदार मूर्त अजोन आद शेग देश और ना पेश जाकर रूप रेख नाराग यत्र तत्र विचा विचा हुए फल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेकत ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल अकेल खेल अमंत को फिर एक देव प्रेम न जाने ही जय भेद और कतेब रूप रंगना जात पात सो जाने कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बक्र फिरा चतुर चक्र चत्र चक्र मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखय जग जाप ही जे जाप आद देव अनाद मूर्त ताप्यो सबे जी थाप परम रूप पुनीत मूर्त पुरन पुर कपार सर्व विश्व सर्व विश्व रचियो चंगो गणन बंजन हार काल हीन कला संयुक्त काल प्रकदेश धर्म ताम सो परम रायत अलकु अभूत अलखीश अंग राग नंग जाक जात पात नाम गर्भ कंजन तुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक प्रकूत गर्भ कंजन सर्व पंजन आद रूप अनुत अंग हीन अभंग अनात्म एक प्रकार सर्व लायक सर्व कायु सर्व को प्रतपाल सर्व गंता सर्व घंता सर्व ते अनपेक सर्व सातन जान जय रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाक नित पाकत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही वहोचित मधुबार चंद तो प्रसार गुणगत उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चित

पर अभंगम विभूते परमात्म प्रभाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे तरभंगे त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे तरभंगे अनुपे न पुत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न ताता है न माता है न जात है न पात है निरसाकं सरिकं तो अमीकं सदेवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंद तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल कलाम है समुतुल कलाम है के साहिब दिमाग है के उत्तम चिराग है के कामन करीम है के राज करीम है के रोजे दिहंद है के राज करीम है करीमल कमाल है के झूसल जमाल है गनीमल के राज है गरीबल निवाज है हरे कुल सिकन है हीरा सुलपिकन है कलंकन प्रणास है समर्थ निवास है अगुंजल आनीम है अगुंजल गनीम है रजाय करीम है समर्थुल जुबा है के साहिब खिरा है के नरकं प्रणास है वैसु निवास है के सर्वुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तबीन है समर्थुल अजीज है पारंग परम ईश है समर्थुल आदेश है अधीशुल अलेक है हमेशुल अपेक है जमीन जमा है अमीकुल ईमा है करीमुल कमाल के द्रुत जमाल है के अचरंग प्रकाश है के अमतो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमतो विभूत है के अमतो पसा है के आत्म प्रभा है के अचरंग अनंग है के अमतो अभंग है मधुबार छंद तो प्रचार मुनमन प्रणाम गुणगन प्रमुदाम हरभर अगंज हरनर प्रबंज अनगन प्रणाम मनमन तल्लाम हरनर अखंड वर्णर अमंड अनुभो अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जलतल मुदाम अंशज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उतार जलतल अमंड जिस विच अपंड जल तल महंत जिस विच बेअंत अनुभव अनास दिलत दर्द दुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकार आज कथनी अनाद कल खंड ख्याल गुरबरिया काल घर कर प्रणाम चित चरनाम अंश जगात आज जिना बात अंजन जगात अंजन अंधरंज बात अंटूट अंटूट भंडार अंठट अपार अटीट क्रम अटकीट क्रम अनबरन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंद तो प्रचार करुणालय है अरकालय है कलकंडन है मनमंडन है जगदीश्वर है परमेश्वरन है कल कारण है तरबुबारण है धृत के धरण है जग के करण है मनमान है जग जान है सर्वं पर है सर्वंकार है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणा का है स्वर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मांड है कलकांड है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अतपात पर है अकृता कृता मृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृता तरणी दृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृता मृता मृत है अजपा कृता है अमृता मृत है नरनायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्भनायक है दर्भपायक है भाव भंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जपजापन है अकलंक कीर्तन सर्वा कीर्तन कर्ता करें हरता हरें परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है के जस जस के जस है भजन प्रिया चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राजे राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो प्रम तत्तंग अतत्तंग च रूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पानी पानी नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनाद विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आस नमो बांक बंके अभंगी सरूपे आरंगे आरामे त्रिभंगे त्रिकाले आरंगे आकामे एक त्रिचंद अजय अलय अभय अभय अभु अजु अनाथ काश अगंज अपंज अलक पख अकाल दयाल अलेक पीक अनाम अकाम अगाह अडाह अनाथे प्रमाते अजोनिया मोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मन अबर्मन अगंजे अलेखे भुजंग प्रिया चंद नमर्तुल प्रणामे समर्तुल प्रणाशे
आगुंजन आनामे सामूर्तल निवासे निर्कामन विभूते समर्थल सारूपे कुकर्मन प्रणाशे सुद्रमन विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणाशे करीमन कुनिंदा समर्थ निवासे।

और क्रिया और जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फते पास दसवीं कभियो बात बिनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हो जित की इच्छा तब

घट घट के पटपट की जान। जब उदकृक करा करता रा प्रजा तरत तम दे अपारा। जब आकृत करत हूँ काबू तुम मैं मिलत देह तर सबू। जेते बदन सिर सब धारा आप आपने बोध उचार है। तुम सभी के रहत निरालम जानत वेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूल उचारत पेता जाको बेवना पावत बेता। ताको कृपा हन अनुमानत महामूल कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्ह है देव। आप में अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुवे तेती।

राम बली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रचार आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सहज चेते मन वजिया वाधाइया।

सुनो संतो कथियो अगत कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू, सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत ब्रह्म बुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन चगोली पाया। कुर्बान कीता तिसह मिटो जिन मोह मिटा लाया, कहे नानक मन चंचला

आए, एक वेग पर समझाया, लब लोभ अहंकार चुका, सतगुरु पल्ला पाया। कह नानक जिसनों आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, विखम मार विचलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बोत नाही बोलना, कन्यो थी की वा।

भगत होए गुरुमुख जिन्नी तियाया पवित माता पिता कुटुंब सहित चो पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिन्नी।

देखो सिख गुरु छेती चन मुख होवे होवे ता संगत सिख कोई जो रह गुरु नानक गुर के चरण हृदय की आए अंतर आत्मा समारे आप छड़ सदा रह प्रणय गुरु बिन अवर न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख चन मुख होई देखो गुरु ते वे मुख होवे बिन सतगुरु मुकत ना पावे पावे मुकत ना होता कोई पुछो विवेक क्या जाए आने

सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आंख वकाणे, हर हर नित करह रचना, कहा कछु न जाने। चित जिनका हिलया, माया बोलन पैरवाणी,

तब स्थिति मन मिलिया सत्ते लाया पाओ। आपे हीरा रत्ने आपे जिसनों दे बुझाए, कह नानक सब दर्तन है हीरा जित जड़ाओ। शीर्षक आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप विख गुरमुख से बुझाए। तोड़े बंधन हो वह मुकत सब।

सिमरत सातर उन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी तत्ते सार न जानी गुरु बाजो तत्ते सार न जानी तही गुरी संसार।

गुफा अंदर रख कर वाजा पौन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखा।

प्रकार हंत्रय रक्षा कर सतगुरु जियो संता दी सेवा दृ प्रमाण कनिया कदम कर्म रेखेला उनके पास यू संतान उत्तम बख्शो अपने चरणा कमला दी प्रीति बख्शो नाम दी दात बख्शो सिमरन दी दात बख्शो ते पातशाह जियो घर दे विच खुशियां खेड़े बख्शिश कने सतगुरु जियो कृपा कनिष्ठ के पातशाह जियो हर प्रकार हंत्रय रक्षा कर सतगुरु जियो ऐसुले आप जी दे हजूर समूह संता वालो कड़ा प्रसाद जी देग हाजरी आप अपने दर ते प्रवान करो प्रवान होया प्रसाद चार संगत वरते जो जी चके सो आप जी का नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे ते पातशाह जियो पवित्र हुक्मनामे दी दात बचे उपरंत श्री आशा त्यौहार दे कीर्तन दी अरंभता बटो सही प्यारे मेल जी नाम लिया आप जी का नाम चिती आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे तरपता।

नदरी क्रम लंगाए पार ओलू चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत लाटू मा दानियान गह पंखी पौंदिया लै नसा सूए चढ़ पवाइए जंत नानक पौंदिया गण।

सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या ठिका क्या तग महला पहला।

दुख दारु सुख रोग पया जा सुखताम न हो। तू करता करना मैं नाही जाहो, करी न होई भले हरि कुद तपस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात मह जो जोत मह जाता कल कला पर पूर रहा, तू सच्चा साहिब सिर्फ सवाल।

0: सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
1: फतेह। तू ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरी तुम मात पिता।

तुमते हो ईसु आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम्ही नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरक गुर नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण धियाइए जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया वे ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहे महाराज जी। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया वंड के छकिया दिग चलाई तेग वाही दे के अण जुट कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी से बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म है ते सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़िया ते चढ़े आरिया ना चराए गुरुद्वारा की सेवा लिए कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी केसा स्वस्थ सिंह निभाई। तिना की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी से बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारा का ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चतावे चतावन का सदका। सर्व सुखोय जह जह खालसा जी। साहिब तहत हर शरियात देखते फते। बिरद की पाए पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे मुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत का रखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। इन माण्यो के माण नितान्यो के तान न्यूटियां दी ओट सच्चे पिता वाहेगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे ता आने रास। महाराज जी आप जी दे चरणां अरदास बेनती आप जी दी महान बख्शिश हुई। अमृत वेले आप जी ने अपने तख्तां ते प्रकाशमान होके संगत नूं दर्शन दारे बख्श के निहाल कीता। अमृत वेले पावन हजूरी अंदर दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना विच संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन होए। उपरंत आए दे हुक्मनामे दीआं विचारां होईआं छे पौड़ियां आनंद साहिब दे जाप होए। महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिआं बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या विचारा करद्या आप जी की सेवा संभाल करद्या होईआं बेअंत बेअंत फुल्लां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उत्तम बख्शिश करना जी। बाणी दा भाव अजा संगतां दे हिरदे ते वसौड़ा आजा संगतां दी हारी दर्द प्रवान करने सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनी आ जी। सभना नूं दरो करो नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी। दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशा विदेशा विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी। बेअंत संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन जाप सरवण करदे आप जी दा धन्नवाद करदे आ। बेअंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादारा सिंघा वास्ते अवलन भेटा कीती महाराज जी। सारी संगत दी हारी दर प्रवान करनी सभना दी माया सफली करनी किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनियां चढ़दी कला बख्शिश करनी जी आप जी दे दर घर दे सेव। काका मनप्रीत सिंह जी महाराज जी
ਜੋ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ। ਬਜਟਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਹ ਪੈਂਡੇ ਵਿਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋਸ਼ ਅੱਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਰਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੇ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ

आई। आपस कौ मुनिवर कर था पहु, का कौ कहो कसाई। मन के अंधे आप न बुझो, काहे बुझावो पाई। माया कारण विद्या बेचहो, जन्म अबिरथा जाई। नारद बचन व्यास

गुरु उपदेश साध की संगत, भगत भगत ताको नाम परयो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत, देख प्रताप

सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जा कह रे। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध नवनित कर तलता कै हर हर हर ना ज।

ब्यास विचार रहो पर ब्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद उपाद रहत हुए बड़े भाग लिब लागी कह रविदास उदास दास मत।

हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन ना सुखावे, नानक सा सुहागन कंती फिर कै अंक समावे। भादो भरम भुली भर जो बन पछताणी, जल थल नीर भरे जल थल नीर भरे, बरस रुते रंग माणी, बरसै निस्कार।

दह दिस साख हरी हरियावल सहज पक्कै सो मीठा नानक असुन मिलहो प्यारे सतगुर भए बसीठा कत्तक किरत पया जो प्रभ पाया दीपक सहज बलै तत जलाया दीपक रस तोले धन पिर मोले दीपक रस तोले धन पिर मेलो धन उमा है सरसी दीपक

वन तृण रस सुख है, आवत की नाही मन तन वसहे मुखे, मन तन रव रहे आ जग जीवन गुर शब्दी रंग माणी, अंडज जेरज सेतज उत्पुज घट घट जोत समाणी, दर्शन देहु दया पत दाते गत पावो मत देहु, नानक रंग रव

नानक माघ महारस हर जप अठसठ तीर्थ नाता फलगुण मन रहसी प्रेम सुपाया अन दिन रहस भया आप गवाया मन मोह चुकाया जा तिस पाया।

नानक सुर नर शब्द मिलाए तिन प्रभ कारण किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो गुरु कृपा गुरु बख्शिश दा सदका नेता प्रति गुरु चरणा विच बैठ के घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। सतगुरु जी ने अज भी तरस कीता है, सतगुरु जी कृपा करन पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह संगत नू प्रदान करन। बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन, आप संगत कृपालु सतगुरु जी बख्शी योग ने जी, भुल्लां ना चितारनियां। प्यार सतफतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कृता निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवड हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े यार करे फिराए अशांत मरे माल पाखाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे जा वारे न जामा के जो तुम पावे सही परिकार।

बंद खला जी पाने और आसन चक्के एको खाए से आखन ओ जाने दुनिया मो आपे जाने आखर दे आखर दे दिखे हाजिर सतो पक्की से।

सत्ता निर्भउ निर्वै अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच सोचे सोच न हो गई।

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाया कमाए संत पापी पाप असंत मूरे यार करे बुराए संत मलेच मल पाप पाए असंत निंदक करे पाप नानक नीच कहे जा मारे न जावा के जो तुम पावे सही फली कर सदा सलाम संत नाम संत नाम राम राम संत लोग संत कहें सिर्फ।

कृता निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैलम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कलवट हत्या कमाए संख पापी पाप असंख मूड़ करे संख मलेच मल पाए असंख निंदक करे पाप नानक नीच कहे मारे न जावा जो तुम पावे सही परिपा।

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कलवड असंख पापी पाप असंख कूड़े आर असंख मलेच मार पाए असंख निंदक।

मरण रहण रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगन पुर पाए। मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जा

तरणी तरे अनत न चाहया जाए, अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए।

गुर मिलिया हर मन वसै सुपाए, मेरा प्रभ पारा कीमत नहीं पाए। शब्द साला है अंत न पारा वार, मेरा प्रभ बक्से बक्सन हार। गुर मिले सब मत बुद्ध होए।

ठाकर हाय। नाम नव नित गुरते पाए, हर कृपा ते हर वसै मन आए। राम राम राम करत्या सुख।

जय सतगुर सहज हर गुण गाई, जय सतगुर सह सत संगत बनाई, जय सतगुर सहज हर गुण गाई, जय सतगुर तहां होमे शब्द जलाई, गुरमुख सेवा महली थाओ पाए, गुरमुख अंतर हर नाम वसाए, गुरमुख भगत

अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वगैरह कमाए शांत पापी पाप अशांत मूर्ख यार करे फिर है शांत मलेच मार पाए अशांत

कृता पुरुष निर्भउ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे सुधाए अशांत मलेच माल पाप खाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कहे क्या मारे न जामा के जो सुख पावे सही परिकार सदा सलाम संत नाम संत नाम राम राम संत

हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सफल फला। सब पे मिट है तुम्हारे नाहे, पेट त संग हर हर गुण गाए राव। हर संग राते मिटे सब चिंता, हर सु सूरज

सकल पदार्थ आश्च तेज नाम महारस माहे सुप्रसन्न पै की सुवा तीजन हर गुण गाहे मात पिता सुध बंद पो तू मेरे प्राण आधारो साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार गोड़ी बैरागण रहोए कि शक्त कि कर्म हल्ला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारू गावै सर्व कल्याण सुख सच पावै राव बन बन खोजत फिर से बैरागी बिरले काहू एक लिव लागी जिन हर पाया सी बट भागी मादक सन गातक चाहे जोगी जति सिद्ध हर आहै जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहै ताकि शरण जिन विसरित नाही पर

किनबित मिले गुसाई मेरे आराम राय। कोई ऐसा संत सह सुखदाता मुहि मार्ग दे बताई। रहाओ अंतर अलक न जाई लगया पर्दा हो मैं पाई। माया मोहे सब जग सोया ए परम कहो क्यों जाई। एका संगत एक गृह वस्ते मिल बात न करते पाई। एक बस बिन पंच दोहेले ओ बस अगोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई। अनक पाव करे नहीं पावे बिन सतगुरु शरणाई। जिनके बंधन काटे सतगुरु तिन साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल पंगल गाया हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन बिच मिले गुसाई। सहज पया

रहाओ। जात कत देखो तत तत तुम ही मुह एव विश्वास हो आयो। कह पे करो अर्थात बेनती जो सुनसो है रघुरायो। लयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो। होना सा सोई पुन होसी सुख दुख कहा दिखायो। खांड ब्रह्मांड का एक उठाना गुर पर्दा खोल दिखायो। नौंड नाम दान एक उठाई तो बाहर कैठे जायो। ठीक है कनक अनक पात साजी बहु प्रकार रचायो। कौ नानक परम गुरु खोई है तिव तत् तते तत् मिलायो। गौड़ी महला पांजवान औद कटे दिन सो रहना रे मन गुरमिल काज सुबारे राव। को करो बिनती सुनो मेरे मीता सत टहल की बेला। कीहा खाट चलो हरला आगे बसन सोहेला। एहु संसार बिकार सहसे मह तेरे हो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियाए हर रस अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई ब्याजो हर गुर से मन है बसेरा। निजकर महल पाओ सुख सहजे बहर न होएगो फेरा। अंतर जामी पुरख बधाते सरदा मन की पूरे। नानक दास यही सुख मागे वो कौ कर संतन की सूरे। गौड़ी माला पांजवा राज पिता पब मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे। रहाओ पांच बिखाती एक गरीबा राखो राखन हारे। खेद करे अर बहुत संताप है आयो शरण सुहारे। कर कर हारे अनक बहु पाती छोटे कसु नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिनते तीरज पाया। शांति मत जियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया। जीत लय कोई महाबिखादी सहज सुहेली बाणी। कौन मन पाया प्रगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओह अपना सीर आया। निरपो संग समारे वस्ते यो डरन कहा से आया। रहाओ एक महल तू होहे अफारो एक महल निमानो। एक महल तू आपे एक महल गरीबानो। एक महल तू पंडित भगता एक महल खल होता। एक महल तू सब कि ग्राहज एक महल कशु न लेता। काट की पुती कहा करे बपरी खिलावन हारो जाने। जैसा पीक करावे बाजीगर वो ऐसो ही साज जाने। अनक कोठरी बहुत पात करिया आप हुआ रखवारा। जैसे महल राखे तैसे रहना क्या इहो करे बिचारा। जिन किया सोई जान है जिन ए सब बित साजी। कौ नानक अपरापर स्वामी कीमत अपनी काजी। गौड़ी माला पंजवा छोड़ छोड़ रे बिक्या के रसुआ। उर्ज रहो रे बावर गावर जो किरखे हरियायो पशुआ। रहो जो जाने तुम अपने काज है जो जग संग न चाले तेरे ससुआ। नागो आयो नाग सुदासी फिर और काल ग्रसुआ। पेक पेक रे कुसुम की लीला राच माज तेनु लो ससुआ। चीजत डोर दिन अर रैनी ये कुछ काज न तीनो कछुआ। करत करत भी बिरदानो हारे उसे तन की नसुआ। क्यों मोहयो उन मोहनी बाला उससे घटे ना रुच चसुआ। जग ऐसा मोहे गुरे दिखायो तो सन पुरुष साज गर्भ सुआ। मार्ग प्रभु को संत बसायो
ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਹਰਿ ਜਸੂਆ ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ਰਹਾਓ ਅੰਤਰ ਕੀ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ਸਰ ਸੁਖ ਮੈਂ ਤੁਝਤੇ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗੈ ਅਸੋਲੇ ਪਰਨ ਸਾਕੋ ਤੁਮਰੇ ਰੰਗਾ ਮੁੰਡਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੇ ਜਾਤੇ ਕੰਪੋ ਕਾਟ ਕੀ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਜਬ ਸੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਚੂਕੋ ਸਹਸਾ ਸਾਹ ਸੰਗ ਦਰਸਾਰੀ ਚਰਨ ਪੁਖਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬਰੀਆ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੇ ਭਵਜਲ ਤਰਿਆ

अब किया तुम्हारा थिया राव अनक जन्म बहुजोनी भ्रमया बहर बोर दुख पाया सुनी कृपा से मानुक देह पाई है देहो दर्द हर राया

तेनो सुनो तुम प्राणपत प्यारे कृपा निध दयाला राख लियो पिता प्रभु मेरे अनाथे कर प्रतपाला जिसनु तुम्हें दिखाए उस दर्शन साध संग के पाछे कर कृपा सूर देव संतन की सुख नान के हो वाचे गौड़ी महला पंजवा और ताके बलिहारी जाके केवल नाम मुदारी रहो महमा ताकी केतक गनिया जन पार्वम रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उनसो तरया उन संसर अवर नजदाते उनकी संग सन परे संसर अवर नजदाते जब उदाहरण सोई आए जो जन दर्श प्यासा उनकी सन परे सो तरया संसंग पूर्ण यासा ताके चरण परोसा जीवा जन के संग निहाला पाचन की रेण होए मन मेरा ओहो प्रभु कृपाला राज जोवन अब जो दीस है सब किचे जोग में काटिया नाम निदान सद नवतन निर्मल इव नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पांजवा जुगत जोग जुगत सुनो जोग जुग सुन आयो गुर से मोको सतगुरु शब्द बुझायो राव नौकट पृथ्वी इस तन में रव्या निमक निमक नमस्कारा देखा गुरु की मुद्रा कानी दृढ़ एक निरंकारा पांच चेले मिल के पहे अकितर अकतरा इसके बद किए दास बरागण या गया कारी तब निर्मल जोगी सिए परम जराये चिराई भी पूछा पांच एक कर पेखिया सहज सुख सो किनी पुखता जो ठाकर मस्तक लेखिया जय पवना ही तहा आसन बाध्यो सिंगी अनहत बानी तद विचार डंडा कर राखियो जोग सना मन पानी ऐसा जोगी बड़ पागी पीट माया के बंधन काट सेवा पूज करो सिस मूर्त की नानक पग चाट गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याई ले मीता हर औखा को गुर दिया ताके निर्मल चीता रहो अंधकार मिटो से तन ते गुर शब्द दीप प्रगासा क्रम की जाली ताकी काटी जागो सत्संग विश्वासा तारी ले पावजल तारू बिखड़ा बोध साधु संगा पूर्ण होए मन की आशा गुर पेटो हर रंगा नाम खजाना भक्ति पाया मन तन सिर अगाए नानक हर जीव सा कहो देव है जाको हुक्म मनाए गौड़ी महला पांजवा दया मया कर प्राणपत मोरे मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी अंध को मैं हाथ दे राखो कछु श्यान उपना मोरी राहो कर्ण कराब सब सुम ही तुम सम्राथ नाही अनहोरी तुमरी गात्मित तुम ही जानी से साव से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभ राते ओस बोध भक्तन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जाके ही प्रगट सतब हुआ अंदन कीर्तन रसन रमोरी रमोरी तुम सम्राट अपार अत ऊचे सुख दादे प्राण अधोरी नानक प्रभु कीजे कृपा संग संगोरी।

महला पांचवा तुमार सीती राति संत हो निवाहे लियो मोको पुरख बजाते और पचाभो दाते रहो तुमरा मन समाही जाने आ संपूर्ण पुरख बजाते राखो शरण अनाद दीन को करो हमारी गाते चरण सागर भोस चरण सुमारे तुम जानो अपनी पाते कर कृपा जिस राखो संगे तेते पार पराते सीत उस प्रभ समरता सब समरे हासे ऐसा न दान देहो मोको अर्जन चले हमारे साथे निर्गुण आर्य को गुण की जय हर ना मेरा मन जापे संत प्रसाद नान घर पेटे मन तन शीतल सरापे गौरी।

एक नाम को शिव पुजारी मुको आचार्य गुरे दिखायो तयो प्रगाध सर्व जियारा गुरु ज्ञान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तिया अन पै ठहरायो मान आ गया सर्व सुख पाए दुखे ठाओ गवायो जो सुप्रसन्न पै प्रभु ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किच आवत ना किच जावत सब खेल क्यों हर रायो कौ नानक अगम अगम है ठाकुर पग टेक हर नायो गौड़ी महला पांजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन साखी ओडगी जा रे जिन सारे ब्रह्मांड खांड हर साको नामच पी जा रे राव मन की मत त्यागो हर जन हुकुम भू सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओहि सियाई रे ओड पसद उधार।

सबको मातृका प्रतिपालक जीव प्राण सुख सागर रे देंदे टूटना ही तिस करते पूर ताकि शरण आई पूर रह।

हर कृपा अपनो नाम दीजै, नानक सद बलियारे। रागौड़ी चेती महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रहा भगत बिना, जीत जन्म ए रत्न अमोलक, साध संगत जप एक खना।

प्रकारी अनेक प्रकारी पराग्रह पेकारी बुरा पला नहीं सुजी है। अनेक बंधन माया परमत प्रमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखे ही महलुजी है। जाकूरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे ना।

प्रसाद आयो बाल बुद्ध सुकरे हरक सोग हान मृत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहो जो लो हो किछ सोचो चित वो तोलो दुखन परे जो कृपाल गुर पूरा पेटिया तो आनंद सहजे जेती स्यान

बिक घेरे मन तन बुधार पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो कोट उठाई चलियो तो लो डान परे ओट डार गुर पूरा मिलया तो नान।

ताग्योर निर्भो पहे संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जो किच करते कारण किनो मन बुरो न लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओढ़ तुहारी परयो आयो शरणाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख न लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल तिया सतगुर शब्द समा

हे करता अपने कर्तव आपे जाने जिन एहो रच नरचाया ओ नानक करण हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरते जप तप संजम।

पे जाने ए साला दी साला है इतनी सुंदर नदियां पे बाहर पांचों मना जाए।

सोहन पंच प्रवान नदरी गर्म प्रवान कच्छ पाई उत्थे पाए नानक गया कर्म खंड का के

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशांत मूर्ख अंध कोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाया कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार गए फिर अशांत मलेश माल पाए अशांत

है संसार सब जो करते सोएं नानक हुकुम दी रती रुती फिरती आ कौन पानी आगी पाता विश्व विच धरती।

सोहन पंच प्रवान सदरी कर्म सोवे कच्छ पाई उत्थे पाए नानक पैर कर्म खंड का एहो।